0: शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana.

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य

0: उपयुज्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्षः नितिन नवीनः, केन्द्रीय मंत्रिणः, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र व्यवस्था अस्ति, या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालक दलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कॉन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरानदेशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुणजेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले

0: श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Suvendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें

0: लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने TVK को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले TVK ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक S. कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोप

0: संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 25,00,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative

0: यू पीपल, AI इज गोइंग टू हेल्प यू।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC Under-17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन पा रहे हैं ये प्रसारण। और इसके अलावा आपके रेडियो सेट के अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर डीटीएच पर और आपके डिवाइस के सर्च इंजन पर जाकर अगर आप हमारे चैनल का नाम टाइप करते हैं तो सीधे तौर पर इस प्रसारण के साथ आप जुड़ सकते हैं। प्रस्तुत है भाव प्रधान बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा।

अंतर मम विकसित करो हे अंतर्यामी, निर्मल करो, उज्जवल करो, सुंदर करो हे, जागृत करो, उद्यत करो, निर्भय

करो हे। आज कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती के मौके पर उन्हीं की इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूं। और जिस तरह से हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हमें खड़े मिल जाएंगे विश्व कवि, आज भी इस खास दिन पर बार बार हमें स्मरण हो रही हैं वो बातें जो उनसे जुड़ी हुई हैं, उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां, सब कुछ। और सच हमारे जीवन से किस तरह से वो जुड़े हुए हैं, ये नए तौर पर कहने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन जब जब हमने अपने जीवन में खुशियां मनाई हैं, जब जब हमारा मन उदास हुआ है, कुछ भी घटित हुआ हो हमारी जिंदगी में, उस हर एक पल के साक्षी रहे हैं टैगोर। ऐसा ही नाता है हमारा उनके गीतों के साथ। हमारी जज्बातों को जिस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में, अपने गीतों में बयां किया है, वो अकल्पनीय है। और किस तरह से इतने वर्षों बाद भी, अब भी शतक से भी अधिक समय से ज़्यादा पुरानी उनकी रचनाएं, तब भी वो आज के इस दिन में, आज के इस युग में भी रेलेवेंट हैं, आज भी हम उनके साथ रिलेट कर पाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। और इस बात से आप भी अवश्य ही सहमत होंगे। और चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का दूसरा गाना आप सबके लिए मैं लेकर आऊँगी। आप लोग सुनते रहें, मेरे साथ बने रहें, कार्यक्रम रसधारा जारी है।

जारी है भाव प्रधान बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। घड़ी में इस वक्त समय 9:39 और 6 सेकंड्स। बात हो रही है विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की कृतियों की, उनकी रचनाओं की। तो अगर मैं हिंदी कविताओं की बात करूं तो छायावादी काव्यधारा में निराला का जो काव्य है वो रविंद्रनाथ से अत्यधिक प्रभावित रहा है। निराला हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को रविंद्रनाथ से परिचित करवाया। रविंद्र कविता कानन जैसी भावनापूर्ण और आधिकारिक समालोचना लिखकर निराला ने हिंदी साहित्यकारों का ध्यान टैगोर की ओर आकर्षित किया। हम सब जानते हैं कि बंगाल से बड़ा ही गहरा नाता रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। उनका जन्म यहाँ हुआ मेदिनीपुर में और इस वजह से उनकी जो दक्षता थी, अगर भाषाओं की हम बात करें तो वो हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं पर समान रूप से अपना जो वर्चस्व है वो रखते थे, दक्ष थे वो, निपुण थे दोनों ही भाषा शैलियों में। और इसलिए ये जो उन्होंने जिस तरह से अध्ययन किया विश्व कवि को, ये सच में इसमें कुछ ऐसी कोई विरल बात नहीं है या चंबे की बात नहीं है, क्योंकि बंगाल से उनका जन्म से नाता रहा। और ये जो उन्होंने आलोचनात्मक कृति लिखी रविंद्र कविता कानन, इसका साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों तरह से महत्व है। उन्होंने इसमें कवि गुरु के काव्य के सामाजिक संदर्भों, रहस्यवाद के लौकिक पक्ष और उनकी जो मानवीय संवेदनाएं हैं उन पर विवेचन किया। इसमें निराला ने रविंद्रनाथ को भारत के महान राष्ट्रीय कवि के रूप में देखा और इसके साथ ही रविंद्र काव्य पर कुछ प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। और इस पर आगे हम ज़रूर बात करेंगे किस तरह से निराला और रविंद्रनाथ का आपसी संबंध, ये जो कहते हैं ना कि आप किसी की पूजा करते हैं, किसी को अपना आप गुरु मानते हैं या किसी से प्रेरणा जब लेते हैं तो इतना आत्मिक एक संबंध बनता है, भले ही हो सकता है कि वो एक साथ एक जगह न रहते हों लेकिन दूर दूर रहकर भी वो जो एक आत्मिक संबंध बनता है, जिस तरह का आत्मिक संबंध हमने बनाया है रविंद्रनाथ के साथ, वो आत्मिक संबंध उससे कहीं अधिक गंभीर गूढ़ आत्मिक संबंध निराला का था। इस पर हम आगे अवश्य ही बात करेंगे, लेकिन आपके लिए चलिए एक और बेहद सुरीला गीत जॉनी मेरा नाम फिल्म से।

जारी है कार्यक्रम रसधारा और आज पूंछ शुभ ईशाख के इस पावन अवसर पर हम बातें कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी जानी अनजानी बातें हैं जिनसे मैं आपको अवगत करवा रही हूँ। किस तरह हिंदी साहित्य पर उनकी रचनाओं का प्रभाव पड़ा इस पर हम बात कर रहे हैं। निराला की बात छिड़ी है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य साधना का जो प्रारंभ हुआ वो हमारे इस शहर से हुआ था और उस दौरान रविंद्रनाथ भारतीय साहित्य जगत के शिखर पुरुष थे। तो अपने आप को निराला गुरुदेव के प्रभाव से बचा नहीं पाए और उनकी आरंभिक कविताओं पर रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है कि उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं का रूपांतरण भी किया है। परिमल की अनेक कविताएं गीतांजलि से प्रभावित हैं और यहाँ पर बस कवि निराला की जो एक विशिष्ट संवेदना है उसकी वजह से इन कविताओं को एक अलग रूप मिलता है। और मैं मतलब एक और चीज़ यहाँ पर ज़रूर उसका जिक्र करना चाहूँगी, जो आरंभिक कविताएं रहीं निराला की वो यकीनन गुरुदेव से प्रभावित रहीं। अनामिका की प्रसिद्ध कविता क्षमा प्रार्थना गुरुदेव के जीवन देवता के भावों के आधार पर रचित रहीं, जहाँ लिखते हैं गुरुदेव, जेशुरे बांधी ले बिनार तार नामिया नामिया गछे बार बार। वहीं निराला कहते हैं इसी तर्ज पर कि बांधे थे तुमने जिस स्वर में तार उतर गए उससे ये बारंबार। और मतवाला में प्रकाशित उनकी कविताओं पर रविंद्र छाया को लेकर जो साहित्यिक वाद विवाद एक तरह से छिड़ा था उसका विस्तृत विवरण रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के पहले खंड में दिया है। तो इस तरह की कितनी बातें हैं जो जुड़ी हैं गुरुदेव के साथ और उनसे जुड़ी एक और बात मैं यहाँ अवश्य कहना चाहूँगी कि वो एक मानवतावादी रचयिता थे, भविष्य दृष्टा मानवतावादी थे और उनका जो लेखन था वो सार्वभौमिक था। इस तरह की सार्वभौमिकता थी उनकी कृतियों में जो और हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। इसी बात पर एक और खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए किनारा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़, राहुल देव बर्मन का संगीत, गुलजार।

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर आप सुन पा रहे हैं ये प्रसारण, ये कार्यक्रम। और अभी फिलहाल सुन रहे हैं वह प्रधान बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा। घड़ी में समय 9:53 और 18 सेकेंड्स और केवल 10 बजे तक का है मेरा और आपका साथ। और बात हो रही है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की कृतियों के बारे में, तो हिंदी फिल्मों पर भी उनकी गीतों का जो प्रभाव रहा उससे हम सब अवगत हैं, हम सब जानते हैं इस विषय को। और एकदम शुरुआती दौर 40 और 50 के दशक से लेकर नई फिल्मों तक, न जाने कितनी फिल्मों के गीत उनकी गीतों से इंस्पायर्ड रहे। इस तरह मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो याराना का गीत छूकर मेरे मन को, तुमर होलो शुरू अमर होलो शारा, इस रविंद्र संगीत पर आधारित। उसके अलावा टूटे खिलौने का नन्हा सा पंछी रे तू, भेंगे मोर घोरेर चाबी नहीं है जबी के, हमारे इस गीत पर आधारित। उसके अलावा माँ बेटा फिल्म का गीत मन मेरा उड़ता जाए, मोनो मोरो मेघेरो शोंगी, इस पर आधारित। झूठी फिल्म का चंदा देखे चंदा, आमी तुम्हाए जोतो शुनिए छिलम गान, इस पर आधारित। इसके अलावा मोने रोबे की ना रोबे हमारी, इस रविंद्र संगीत पर आधारित। बचपन के दिन भुला न देना दीदार फिल्म से, और भी बहुत सारे गाने जिनमें से एक गीत आज मैंने कार्यक्रम में शामिल किया, अभिमान फिल्म का तेरे मेरे मिलन किए रहना, जो दी तारे नाई चीनी गो शेकी, और भी बहुत सारे गीत जिनका इन्फ्लुएंस प्रभाव हमने हिंदी फिल्मी गीतों पर देखा है। और ये कालजयी कृतियां हैं, कालजयी रचनाएं हैं जिनकी सुंदरता, जिनका ये जो इफ़ेक्ट है हमारे मन पर, हमारे इमोशंस के साथ इनका जो जुड़ाव है, ये कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। इसका जो इतना विस्तार है हमारे मानस पटल पर, ये विस्तार रहने वाला जब तक मानवता है, क्योंकि मानवतावाद को लेकर ही विश्व कवि सारी जिंदगी चले। और इसी वजह से उनकी ये जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, ये शाश्वत हैं और कभी भी इनका नाश नहीं होगा। इसी बात पर अब मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। और जाने से पहले आप सबके लिए एक और खूबसूरत सा हिंदी फिल्मी नगमा लेकर आऊंगी, फिल्म कल आज और कल से। किशोर कुमार की आवाज, शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया इस गीत को और हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था। आप लोग सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। कृपया अगले कार्यक्रम की घोषणा के लिए हमारे साथ बने रहेगा। नमस्कार।

0: मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है।
1: हम सबको आकाशवाणी की हर बात खूबसूरत लगती है। हर कोई अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनने की फिराक में रहता है। रेडियो एक और चाहने वाले अनेक, कोई पुराने फिल्मी गाने, कोई सैनिक भाइयों का कार्यक्रम, पंचतंत्र की कहानियां, कोई समाचार तो कोई क्रिकेट की कमेंट्री बड़े चाव से सुनता है। बदलते जमाने ने, नई नई तकनीकों ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयिता। पेशे खिदमत है रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। माइक्रोफोन पर हाजिर है आपकी मेजबान सादिया सदफ। तमाम सुनने वालों को सादिया का प्यार भरा आदाब।

0: करना पड़ता है, तो वो तलफ़ुज़ के लिए उसकी
1: पूरी आवाज़
0: आवाज़ निकालनी है, आवाज़ पर ही डिपेंड करता है,
1: आवाज़ के उतार चढ़ाव पर डिपेंड
0: करता है। अब उसी तरह से उर्दू में भी जब हम लिखने जाते हैं तो पूरा पूरा लफ्ज नहीं, हर्फ नहीं लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, आप कलम ले लिया, जैसे भी कहा कलम, तो ये बना है काफ लाम मीम। अब ये काफ लाम मीम को अलग अलग हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगता है, अब पढ़ने में भी दुश्वारी होती है, तो इसीलिए अब कर दिया जाता है कि काफ को छोटा कर दिया जाता है, लाम को छोटा कर दिया जाता है, और मीम को भी, मीम को आखिर में जो हर्फ रहता है वो पूरा रहता है। तो अब ये लेसन फिर आता है, ये सबक आता है ये आपका कि उर्दू के हर्फों को छोटा कैसे किया जाता है, उसकी सूरत क्या हो जाती है। ये तो हम लोग फिर बाद में इसको भी पढ़ते हैं हुरूफ इल्लत के बारे में, लेकिन मैं अभी इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
1: हुरूफ इल्लत की कुछ मिसालें और
0: मैं हुरूफ इल्लत बताया, ये हुरूफ इल्लत जैसे बताया कि वावल को कहते हैं और अलीफ वाव, ये जो ये तीन हर्फ हैं तो ये असल में जबर जेर और पेश की आवाज निकालता है, इसीलिए इसको हुरूफ इल्लत कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में जैसे माई, अब माई में ना ए है, ए ई आई ओ यू कुछ नहीं है, तो फिर इसको वावल क्यों कहा, तो वाई है, वाई को सीमे वावल कह लेते हैं। तो उर्दू में हे जो है गोल हे, जो गोल मतलब जीरो की तरह हे, एक हर्फ है हे जिसको जीरो की तरह लिखा जाता है, तो इसे जो है हम सीमी वावल करार दे सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट हर्फ है, और इस हर्फ का ये, इसको तीनों को मिला के और ये हे को मिला के जो चार हर्फ हैं, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि जैसे बताया कि उर्दू में हिंदी के का भी व्याकरण शामिल है और अरबी और फारसी का भी शामिल है, तो हम जब आगे पढ़ते हैं तो उसमें इन हर्फों का बड़ा अहम रोल नज़र आता है।
1: सर, हमारे सामीन को कुछ होमवर्क के तौर पर कुछ करने के लिए बता दें।
0: होमवर्क के तौर पर तो ऐसा है कि जो लोग उर्दू पढ़ रहे हैं शुरू शुरू में
1: जी,
0: तो हिंदी वाले काखा गाखा पढ़ते हैं, बंगला वाले भी काखा गाखा पढ़ते हैं, उर्दू में वाले को भी अलीफ बे पे ते पढ़ना चाहिए
1: जी।
0: और पढ़ने के बाद इस लेसन में तो यही है कि हुरूफ तहजी जो कहा कि अलीफ से लेके या तक, तो पूरा पढ़ना भी होगा और उनकी शक्लों को अपने दिमाग में रखना भी होगा
1: जी,
0: ताकि हम जैसे का की क्या सूरत है, घा की क्या सूरत है, तो उसी तरह से उर्दू के भी शब्दों की, उसकी जो शक्ल है, उसकी जो सूरत है, उसका जो शेप है, उसको जहन में रखना पड़ेगा ताकि हम उसको पहचान सकें।
1: जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे सामीन को कि उसको समझना जरूरी है, और समझने और सीखने के लिए हमें मश्क करना जरूरी है। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस किस्त के लिए।
2: मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर, यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन, अपनी मेजबान सादिया के साथ। अभी आप सुन रहे थे अशरफ अहमद साहब से वॉवेल्स पर गुफ्तगू। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में दोबारा नशर किया गया है, क्योंकि इससे कबल भी वो नशर हो चुका है। उर्दू सीखने के शौक के तहत इस प्रोग्राम को आपकी समातों के हवाले फिर से एक बार पेश किया गया, और इसी के साथ वक्त हो गया है शहरनामा का। आइए समात कीजिए। इल्मी, तहजीबी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों पर मबनी हफ्तावार शहरनामा में आपका खैर मकदम है। सामिन, गुज़िश्ता 2 मई को टूना मछली का आलमी दिन मनाया गया, जिसके तहत आलमी सतह पर पायदार माहीगिरी और टूना स्टॉक के तहफ़ की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की गई। सन 2016 में अकवाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली के जरिए कायम किया गया ये दिन ज़रूरत से ज़्यादा माहीगिरी के खतरात और दुनिया भर में खुराक की हिफाजत, गजाइत और इकतसादी तरक्की में टूना के अहम किरदार के बारे में बेदारी पैदा करता है, और बुनियादी मकासद پائیدار ماہی گیری کے

तरीकों को फरोग देना, ज्यादा मांग और ज्यादा माहिगीरी की वजह से टूना स्टॉक को तबाह होने से रोकना है। 2 मई को मारूफ फिल्म साज सत्यजीत रे का यौम पैदाइश भी था। सत्यजीत रे एक एहसास हिंदुस्तानी फिल्म साज और पॉलीमिथ थे जो 2 मई 1921 को कोलकाता में पैदा हुए। फिल्मी दुनिया ने 2 मई को उनकी 105वीं सालगिरह मनाई, जो सिनेमा, अदब और फन में उनकी बेमिसाल खिदमात को याद करने का अमल है और उन्हें खराज तहसीन पेश करने की एक सूरत भी है। पाथिर पांचली और अप्पू ट्रिलॉजी जैसे शाहकारों के जरिए उन्होंने काफ़ी शोहरत कमाई है। उनकी मीरास आलमी सिनेमा को मुतासिर करती रहेगी। वो फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, मुसन्निफ, गीत निगार, मैगजीन एडिटर, मुसव्विर, खत्तात और मौसीकार थे। उन्हें भारत रत्न 1992 में एकेडमी एजाज अवार्ड, 1992 में पद्म विभूषण 1976 और 32वां कौमी फिल्मी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। उनके काम में शदीद हकीकत पसंदी, इंसान दोस्ती और तफसील पर बारीकबीनी से तवज्जो दी गई है, जिसकी वजह से वो आलमी सिनेमा की तारीख के सबसे ज़्यादा बासर फिल्म साजों में से शुमार किए जाते हैं। इस मौके पर फिल्मी जगत के मारूफ शख्सियात ने उन्हें याद किया और खराज अकीदत पेश किए। मुख्तलिफ इदाराजाती प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए गए। 4 मई को मगरिब बंगाल असेंबली इंतखाबात के शानदार नतीजे का ऐलान हुआ। आज इस नतीजे की बुनियाद पर नई हुकूमत की तश्कील होगी। फातेह जमात अब से कुछ ही देर में हल्फ उठाएंगे और हुकूमत की बागडोर संभालेंगे। सामीन, गुज़िश्ता 5 मई को दमा का आलमी दिन था, जिसका अहतमाम ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा के जरिए दुनिया भर में दमे से मुतालिक आगाही और देखभाल को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। दमा का आलमी दिन मई के पहले मंगल को मुनक़िद होता है। 5 मई 2026 को दमा के आलमी दिन के लिए थीम थी दमा के शिकार हर फर्द के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्हेलर तक रसाई अब भी एक फौरी ज़रूरत है। जीना की तरफ से मुनज़्ज़म ये थीम बुनियादी हवा की नाली की सोजिश के इलाज और काबिल रोक अमवात को रोकने के लिए दुनिया भर में ज़रूरी इंसदाद सोजिश इलाज तक मसावी रसाई को यकीनी बनाने पर जोर देती है। गुज़िश्ता 6 मई को मोतीलाल नेहरू जयंती थी। मोतीलाल नेहरू एक हिंदुस्तानी वकील, कारकुन और सियासतदान थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता थे। उन्होंने 1919 से 1920 और 1928 से 1929 तक 2 बार कांग्रेस के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो नेहरू गांधी खानदान के सरपरस्त और हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे। स्वराज पार्टी के शरीक बानी भी थे। वो एक इंतहाई कामयाब बैरिस्टर थे। उन्होंने कौमी तहरीक के लिए अपनी प्रैक्टिस तर्क करने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में शोहरत हासिल की थी। 1919 के जलियांवाला बाग के कत्लेआम से बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर कौम परस्त तहरीक में शामिल हुए। बाद में महात्मा गांधी की अदम तआवुन तहरीक की हिमायत करने लगे। उन्होंने मरकजी कानून साज असम्बली के अंदर से बरतानवी हुकूमत की मुखालफत करने के लिए स्वराज पार्टी की मुश्तरक बुनियाद रखी। 1928 की कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट की तसनीफ की, जिसमें हिंदुस्तान के लिए तसल्लुत की हैसियत का मुतालबा किया गया और हकूक पर मबनी जमहूरियत की तजवीज़ पेश की गई। वो सिविल नफरमानी तहरीक 1930 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की वजह से कैद भी किए गए थे। सामिन, गुज़िश्ता 7 मई को एथलेटिक्स का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद नौजवानों की फिटनेस को फ़रोग देना, ट्रैक एंड फील्ड खेलों में शिरकत की हौसला अफजाई करना और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की अहमियत को उजागर करना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के ज़ेर एहतमाम इस दिन की तवज्जो दुनिया भर में दौड़ने, छलांग लगाने और फेंकने के इवेंट्स के ज़रिए नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने पर मरकूज़ है। इस दिन का मकसद नौजवानों में एथलेटिक्स को फ़रोग देना और खेलों को माहौलियाती पायदारी से जोड़ना, जो अक्सर बच्चों के एथलेटिक्स के इकदाम के साथ मुंसलिक होता है, थी। थीम तहरीक के ज़रिए नौजवानों को बाख्तियार बनाने और उम्र भर की आदत के तौर पर फिटनेस को फ़रोग देने पर तवज्जो मरकूज़ करती है। स्कूल और कम्युनिटी ग्रुप्स आमतौर पर हिस्सा लेने के सरगर्मियों में इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हौसला अफजाई करते हैं और इसके लिए मकामी इलाकाई और कौमी ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों की मेज़बानी करते हैं। इस इकदाम का मकसद आलमी सतह पर खेलों की सकाफत को मजबूत बनाना है, ख़ास तौर पर जिस्मानी सेहत और नज़्म व ज़ब्त की बुनियाद के तौर पर एथलेटिक्स को फ़रोग देकर। गुज़िश्ता 8 मई को बुनियादी तौर पर आलमी रेड क्रॉस

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्स पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अपनी मेजबान सादिया के साथ, और इसी के साथ समाप्त करें अगली पेशकश फिल्म दिलजले से।

और इसी के साथ वक्त हो गया है आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश का। समाप्त कीजिए एक और हुब्बुल वतनी से पुर नगमा, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में फिल्म कर्मा से।

दोस्तों आप सुनते रहिए इस नगमे को, इजाजत दे अपनी मेजबान सादिया सदफ को, आपसे फिर मुलाकात होगी। सुबह खैर, थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे सयानी के साथ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम। सुबह खैर, सुनते रहिए आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता।

right on the brink of something great? Or have I lost it?

आकाशवाणी कोलकाता का ये संचयिता चैनल है मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर। ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न केवल आपके रेडियो सेट पर बल्कि न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर, डीटीएच पर और आपके डिवाइस के सर्च इंजन पर जाकर। अगर आप हमारे चैनल का नाम टाइप करते तो सीधे तौर पर इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ सकते हैं। प्रस्तुत है दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। सुरभि में सबसे पहले चर्चा है कि अंतर्गत आज बात करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की। महादेवी वर्मा पथ के साथी में लिखती हैं कि रविंद्र ने जो कुछ लिखा है उसका विस्तार और परिमाण हृदयंगम करने के लिए हमें यह सोचना पड़ता है कि उन्होंने क्या नहीं लिखा। यह भी लिखती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो पहले नहीं कहा गया था, पर इस प्रकार सब कुछ कहा है जिस प्रकार किसी अन्य युग में नहीं कहा गया। बंग भूमि के जन जन के मानस में बसे विश्व कवि रविंद्रनाथ की व्याप्ति हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। आज उनकी जयंती पर कोटिशः नमन है। WB Yeats ने रविंद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का एक उत्कृष्ट और रचनात्मक कलाकार कहा था। पश्चिमी दुनिया में भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से पेश करने का श्रेय गुरुदेव को ही जाता है। हमेशा से ही गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने विश्व मानवतावाद की बात कही। मानवीय गुणों को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि विविधता में एकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का एकमात्र संभव तरीका है। वर्ष 1929 तथा वर्ष 1937 में उन्होंने विश्व धर्म संसद में भाषण भी दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार जीतने वाले वो पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। वर्ष 1915 में उन्हें ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। उनके द्वारा कहे गए उदाहरणों में से याद आती है ये बात कि केवल खड़े होकर

चलिए अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, फिल्म का नाम खूबसूरत। जी हाँ, गीत भी खूबसूरत, फिल्म भी खूबसूरत। पहला पड़ाव चूंकि हमने पार कर लिया है सुरभि का, पहल पर पहुंचने से पहले चलिए थोड़ा सा, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लिया जाए। सुनते रहे, साथ रहें, आकाशवाणी कोलकाता का ये संजयता चैनल है।

कथितिरा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंगता खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंद्रा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर वनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी

37 सेकेंड्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। अब बारी है हमारे दूसरे सेगमेंट की, जिसे हम पहल के नाम से जानते हैं। पहल के अंतर्गत आज बात करेंगे पीएम कृषि सिंचाई योजना की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी पीएमकेएसवाई 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य था हर खेत को पानी सुनिश्चित करना और प्रति बूंद अधिक फसल के माध्यम से सिंचाई दक्षता को बढ़ाना। ये योजना ड्रिप स्प्रिंकलर तकनीक पर 45% से 80% तक सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे पानी की 60% तक बचत होती है। इस योजना के 4 मुख्य घटक हैं। पहला तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, यानी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना। दूसरा, हर खेत को पानी अर्थात नए जल स्रोतों का निर्माण और पुराने जल निकायों जैसे तालाबों का पुनरुद्धार करना। तीसरा, प्रति बूंद अधिक फसल मतलब ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देना ताकि पानी की बचत हो। और चौथा, वॉटरशेड विकास यानी वर्षा जल का संचयन और मिट्टी की नमी को बनाए रखना। सरकार किसानों को सिंचाई उपकरण खरीदने के लिए भारी सब्सिडी देती है। लघु और सीमांत किसानों को कुल लागत का लगभग 55% यानी 55% तक अनुदान मिलता है और अन्य किसानों को लगभग 45% यानी 45% तक अनुदान मिलता है। यह सहायता अधिकतम 5 हेक्टेयर तक की भूमि के लिए मान्य होती है। सभी किसान स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य ही होनी चाहिए और आप अपने राज्य के कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप इस योजना के लिए, जिसे हम पीएम कृषि सिंचाई योजना के नाम से जानते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी ब्लॉक कृषि अधिकारी या जिला कृषि कार्यालय में जाकर भी इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। ये टोल फ्री नंबर एक बार फिर बताती हूँ मैं, किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर है 1800-180-1551। इस नंबर पर आप और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो पहल के अंतर्गत आज हमने बात की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और चलिए अब सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए, केवल और केवल आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर।

देखते देखते हमारा जो समय है वो समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। सुरभि लेकर हाजिर थी आज चैनिका। चलते चलते आप सबके लिए ये खूबसूरत सा गीत पड़ोसन फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: garbage.
1: Holla!

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग

लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Bisesar, and explored new ideas and initiatives to further strengthen the bilateral cooperation.
1: India has traditionally had very warm and friendly relations with Trinidad and Tobago, and these ties have been underpinned by shared history, our struggle against colonialism, and by our very special bonds of cricket. The people of our two countries share so much in common, whether we talk of clothing and sports or food habits and traditions.
0: Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Atal Pension Yojana have completed 11 years of providing social security cover to citizens across the country. Ministry of Finance said these schemes were envisioned to extend affordable financial protection to all, particularly the underserved and vulnerable sections of society. These flagship schemes aim to broaden the insurance and pension landscape by shielding citizens against life's uncertainties and fostering long-term financial resilience. Speaking about the schemes, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that over 27 crore enrollments have been done under PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, 58 crore in PM Suraksha Bima Yojana and 9 crore enrollments under Atal Pension Yojana. The two-day Indian Ocean Dialogue IOD10 with the theme of the Indian Ocean region in a transforming world concluded yesterday in New Delhi. In a statement, the Ministry of External Affairs said that the dialogue brought together senior officials, policymakers, scholars and experts from Indian Ocean Rim Association states and dialogue partners to deliberate on key regional developments and emerging challenges in the Indian Ocean region. The Ministry of External Affairs organized the dialogue in collaboration with the Indian Council of World Affairs and the Indian Ocean Rim Association Secretariat. The Somnath Amrit Parv 2026 is being celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The five-day celebration highlights the historic significance of the temple and celebrates its enduring legacy. To commemorate this event, Prime Minister Modi is visiting the Somnath Temple on Monday.
2: The celebration honors the enduring legacy of the Somnath Temple. It marks 1,000 years since the first recorded attack on the Somnath Temple in 1026. Somnath Temple holds a sacred place as the first among the 12 Adi Jyotirlingas of Lord Shiva. Somnath Temple has been repeatedly ravaged and plundered by invaders over centuries. Every time, devotees and rulers have rebuilt it and restored its lost glory. Somnath Temple, therefore, stands as a testimony to India's unshattered faith that has risen victorious over repeated assault over centuries. The festivities will culminate on 11th of this month with a grand Kumbhabhishek at the temple spire using water from 11 sacred shrines. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
0: On to sports. In IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at Delhi last night. Chasing the victory target of 143 runs, Kolkata Knight Riders made 147 for the loss of 2 wickets in 14.2 overs. Finn Allen delivered a jaw-dropping batting masterclass to power Kolkata Knight Riders to a commanding 8-wicket victory over Delhi Capitals. Two new suspected cases of hantavirus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts raced to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Shobhendu Adhikari becomes the first BJP Chief Minister of West Bengal, takes oath along with 5 cabinet ministers. Political stalemate continues for government formation in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
5: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
4: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
6: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
3: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई

0: ब्यौरा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
2: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
3: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ

0: व्रत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है आकाशवाणी कोलकाता। অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজ মিডিয়াম ওয়েভে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন তবলা বাদন। শিল্পী রূপক ভট্টাচার্য।

धान धान धकट धकट धकट धत धकत गदिग दिग घंतड़ान धान धत धा धनक धत धकत धा धान धान धकट धकट धकत धकत धकत धकत घंतड़ान तान धकट धकट धकत धत धकत गदिग दिग घंतड़ान धान धकट धा धनक धत धकत धा धान धान धकट धकत धकत

0: सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव M.A. बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs were sworn in as cabinet ministers. Their cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu. More from our correspondent.
3: Today is Pochishe Boishak, an auspicious day, birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Thakur, which is celebrated across the state. This day has been selected for the swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nobin, and other leaders of the Bharatiya Janata Party present in the swearing-in ceremony. The program started with floral tribute to Kobi Guru Rabindranath Rabindranath Tagore, Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Shubhendu Adhikari and other dignitaries paid respect to Kobiguru. Kollan Laha reporting from

297 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल पर प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्वशी। इसके अंतर्गत मोहिनी में आज हम करेंगे कुछ बातें, करेंगे याद एक ऐसे अभिनेत्री को जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है, जी हाँ, मीना कुमारी। पर चलिए पहले सुनते हैं ये गीत।

0: मीना कुमारी हिंदी फिल्म्स मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर और दुख भरी छवि वाली अभिनेत्री मानी जाती है। उन्हें प्यार से ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। दोस्तों, उनका असली नाम महजवीन वानो था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। मीना कुमारी ने ज़्यादातर दर्द और भावनाओं से भरे किरदार निभाए। उनकी आंखों की उदासी और अभिनय इतना सच्चा लगता था कि दर्शक उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते थे।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

फिल्म बैजू बाबरा में अभी इनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, निजी जीवन की बातें करें मीना कुमारी जी की, तो उन्होंने मशहूर फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से शादी की, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं रहा। इन परेशानियों का असर उनकी सेहत और मानसिक स्थिति पर भी पड़ा। जीवन के आखिरी पल काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा, तबीयत लगातार बिगड़ती रहती थी। इनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में पाकीज़ा को याद किया जाता है। उनकी सबसे यादगार फिल्म पाकीज़ा, जो कि 1972 यानी कि 1972 में मानी जाती है। इस फिल्म को बनने में करीब 14 साल लगे और दुख की बात यह है कि फिल्म रिलीज होने के कुछ ही समय बाद उनका यानी मीना कुमारी का निधन हो गया।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में,
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर बनी फिल्म परिणीता में उनका सरल और मासूम किरदार बहुत पसंद किया गया। दिल अपना और प्रीत पराई एक और फिल्म, इस फिल्म में उनका भावनात्मक अभिनय बेहद दिल छू लेने वाला था दोस्तों। इसके लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म दीवार के इस गीत को अभी भी आपने सुना। इस फिल्म के लिए यानी काजल एक ऐसी फिल्म थी जिनके लिए मीना कुमारी जी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। उनकी एक्टिंग बहुत ही पावरफुल मानी जाती है इस फिल्म में। मेरे अपने एक ऐसी फिल्म थी, ये उनकी आखिरी फिल्मों में से एक थी। इसमें उन्होंने एक बुजुर्ग महिला का रोल निभाया जो युवाओं को जोड़ने की कोशिश करती है। अगर उनकी तीन फिल्मों को चुनने के लिए कहा जाए तो मेरे हिसाब से पाकीजा, साहेब बीबी और गुलाम और बैजू बावरा, ये तीन फिल्म उनकी बेहद ही खूबसूरत फिल्में रही जिनके लिए उन्हें काफी याद किया जाता है। हालांकि उनकी सभी फिल्में बहुत ही अच्छी थी दोस्तों।

महाराणा प्रताप जयंती एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, फॉलोड बाय साप्ताहिक द न्यूज बेस्ड वीकली राउंड अप एट 8:15 वी हैव कहकशान उर्दू प्रोग्राम. आज की बात विल फीचर बर्थडे ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, फॉलोड बाय बारगे ख्याल, उर्दू रुबाई की तारीफ, उमर खयाम. एट 10:30 वी हैव वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम डांस टू द ग्रूव एंड एट 11:10 हिंदी फिल्म सॉन्ग्स. That was the highlight of the program to broadcast later this evening.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए

0: विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। BJP leader Shubhendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. The newly elected MLAs of the West Bengal Legislative Assembly will take oath on the 13th of May. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and other leaders of the Bharatiya Janata Party were present at the swearing-in ceremony. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking the oath as the Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK has claimed that it has secured support of 120 MLAs to form a new government in the state. Tamilraga Vetri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, required the majority mark of 118 in the 234-member house to form a new government. The party said both the VCK and the IUML have extended unconditional support to it for government formation. Vijay, who won from 2 assembly constituencies, will have to vacate 1 seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with 5 MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with 2 MLAs each, stands at 13. India has conducted

0: इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवी के दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे 20+ विधायकानां समर्थनं वर्तते। 34,200 सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18+ विधायकाः आवश्यकाः आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88% आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सैफ विजयः द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70+ भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं 2-2 विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य संपूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रीय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्री पाण्डेयः अवोचत् यत् 23,000+25,000+ यावत् 12 राष्ट्रीय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26,00,000 प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकरः भारत त्रिनिदाद टोबैगो देशानां मिथः पारंपरिक संबंधानां प्रशंसाम् अकरोत्। त्रिनिदाद टोबैगो इत्यस्य विदेश तथा कैरिकॉम प्रकरणानां मंत्रालयस्य समारोहे डॉ. जयशंकरेण द्वयोः देशयोः प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंधानां अथ ऐतिहासिकतायाः उल्लेखं कृतम्। भारतस्य त्रिनिदाद टोबैगो अमुना सह परंपरागत रूपेण मैत्रीपूर्णाः सम्बन्धाः वर्तन्ते। उभयोः देशयोः जनाः वेशभूषां क्रीडां आहारव्यवहारं च समेत्य परंपराः यावत् नैकेषु विषयेषु साम्यं संददते। डॉक्टर जयशंकरेण प्रधानमंत्रिणा कमलाप्रसाद विशेषवर्येण सह मेलनं विधाय द्विपक्षीय सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं चर्चा कृता। यात्रावधौ पर्यटनं विदेश कैरिकॉम मंत्रालय भवनस्य सौरोर्जा संचालनं विविध परियोजनाः अथ च आयुर्वेद केन्द्रस्य स्थापनां समेत्य नैकेषु विषयेषु सहमतिः जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः कर्नाटकस्य बेंगलुरु नगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य आयोजयिष्यमाणे समारोहे सहभागितां करिष्यति। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर इत्यत्र नवनिर्मितं ध्यानमन्दिरमपि उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद नगरे प्रायः 9,500 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्र हैदराबाद पण

0: That was the end of Western Music Program. Please stand by for news to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।

0: राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. BJP leader Shivendu Adhikari took oath as the Chief Minister of West Bengal today, heading the first BJP government in the state. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Shruti Ram Turu were sworn in as cabinet ministers. The newly elected MLAs of the West Bengal Legislative Assembly will take oath on the 13th of May. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of other NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and other leaders of the Bharatiya Janata Party were present at the swearing-in ceremony. Prime Minister Modi congratulated Shivendu Adhikari on taking the oath as the Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK has claimed that it has secured the support of 120 MLAs to form a new government in the state. Tamilaga Vetri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, required the majority mark of 118 in the 234-member house to form a new government. The party said both the VCK and the IUML have extended unconditional support to it for government formation. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. At around 11 a.m, the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Hyderabad to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will embark on a two-day visit to Gujarat starting tomorrow. On Monday, Mr. Modi will participate in Somnath Amrut Mahotsav, marking the 75th anniversary of Somnath Temple's restoration. The Enforcement Directorate

297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर प्रस्तुत है कार्यक्रम दर्पण। दर्पण के अंतर्गत एक नज़र में रविंद्र जयंती के अवसर पर हम करेंगे कुछ बातें कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर से जुड़ी।

जी हाँ, आज कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की जयंती है और इस अवसर पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दर्पण में रविन्द्रनाथ ठाकुर से जुड़ी कुछ बातें। रविन्द्रनाथ ठाकुर के विषय में बताना या कहना ये एक बहुत बड़ी चुनौती के समान होता है दोस्तों। जी हाँ, कवि, लेखक, संगीतकार, चित्रकार और दार्शनिक कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, उन्हें कवि गुरु या विश्व कवि भी कहा जाता है। उनके बारे में बातें अगर करूं तो उनका जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही विद्वान और सांस्कृतिक था। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, गीत और निबंध हर क्षेत्र में लिखा। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य पुस्तक गीतांजलि है। उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और प्रकृति से जुड़ी होती थी।

0: नमस्कार। शहर की तमाम गतिविधियों के साथ आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस कार्यक्रम साप्ताहिकी में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रेस स्वतंत्रता दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती, थैलेसीमिया और मौसम की। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव के नतीजों से। पश्चिम बंगाल में 4 मई को विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 294 में से 207 सीटें जीती, जिसके बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 80, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2, आम जनता पार्टी ने 2 और सीपीआईएन और एआईएसएफ ने 1-1 सीटें जीती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ जयंती की। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम भारत के महानतम बुद्धिजीवियों में से एक है। बंगाल की भूमि में जन्मे टैगोर ने साहित्य कला में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गीतांजलि के लिए उन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी जीता, जिसके बाद वे एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी बने। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भी उन्हीं की देन है। इस साल यानी 2026 में रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती मनाई गई। इस विशेष दिन पर बंगाल के लगभग सभी संस्थानों में सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में हमने प्रोफेसर शोमा बंदोपाध्याय से बात की, जिन्होंने बताया कि
1: रविन्द्रनाथ ठाकुर पर तो आप जानते हैं कि जिस धरती पर बैठकर हम उन पर ये कार्यक्रम आज का कर रहे हैं, तो जैसे खासकर मैं बांग्ला भाषियों की बात करूंगी कि उनके सुबह जो है वो उनके संगीत से अगर होते हैं तो उनकी शामें जो है उनकी कविताओं को और नाटकों को याद करते हुए बीतता है। तो इस तरह से वो हमारे मन मंदिर में रचे बसे, और इतने वर्षों के बाद भी मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी ऐसा क्षण आए जब हम उदास हो या शायद हम बहुत हर्ष में हो, उल्लास का मौका हो, कोई भी ऐसा क्षण जो हमारी आवेग से हमारी संवेदनाओं से जुड़े हुए हो, तो ऐसे समय में हम रविन्द्रनाथ को ही याद करते। वो
0: साथ ही उन्होंने बताया कि कला से उनका कितना गहरा संबंध था।
1: विश्व भारती के शांतिनिकेतन के इतिहास को देखते हैं, आप जानते हैं कि गुरुदेव ने शांतिनिकेतन की स्थापना की थी। विश्व भारती की स्थापना क्यों की थी? क्योंकि वो चाहते कि एक उन्मुक्त परिवेश में बच्चे जो है उनको शिक्षा दी जाए, और इसमें वो सब जो है हर भाषा के लोगों को उन्होंने शामिल किया। तब उनके मन में आया कि यहाँ पर हिंदी भवन की स्थापना होनी थी, और फिर जो है वो उन्होंने सबसे पहले जो निमंत्रण उन्होंने भेजा, आप जानते हैं कि आचार्य हरी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि एक बेहतरीन लेखक, निबंधकार और हिंदी के जो है ज्ञाता थे।
0: आइए बात करते हैं थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें शरीर सामान्य से कम हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है, जिससे

0: खून की कमी होती है। थैलेसीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए एक जागरूकता बढ़ाना और पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है और इसके लिए एक विशेष बजट भी आवंटित होती है। इसके अलावा ब्लड बैंक की सुविधा, डे केयर सेंटर, लैब, दवाओं की भी पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा होती है। इस विषय पर हमने हेमाटोलॉजिस्ट से बात की।
1: मैं प्रोफेसर राजीव दे। हमारे इंडिया में हर साल 10 से 15 हजार थैलेसीमिया बच्चा पैदा होते हैं और हमारा बंगाल में मोर देन 10% इज थैलेसीमिया कैरियर। सो थैलेसीमिया पेशेंट के लिए वी नीड टू स्पेंड अ ह्यूज हेल्थ बजट। सबके लिए हमारे ब्लड बैंक में ब्लड का अरेंज करना जरूरी है, पर थैलेसीमिया से हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम थोड़ा अवेयर होंगे। थैलेसीमिया का हर टाइप का इलाज अवेलेबल है। थैलेसीमिया क्योर हो सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, वो ओनली एक उपाय है जहां से हम थैलेसीमिया पेशेंट को पूरा क्योर कर सकते हैं।
0: साथ ही उन्होंने बताया कि
1: पर थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट का जो सेंटर वो इतना ज्यादा नहीं है और मैचिंग मिलना मुश्किल है और ये महंगा भी है। सो इसीलिए अगर हम ये विश्व को थैलेसीमिया मुक्त करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि हमको जानना चाहिए कि हम लोग खुद थैलेसीमिया कैरियर है कि नहीं, और अगर थैलेसीमिया कैरियर है तो और कोई थैलेसीमिया कैरियर ना हो ऐसे शादी करना आइडियल है, तो बच्चों का थैलेसीमिया बीमारी होने का कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। पर अगर दोनों थैलेसीमिया कैरियर का शादी हुआ फिर भी थैलेसीमिया बच्चा नहीं लाने का भी तरीका है, वो है कि प्रीनेटल डायग्नोसिस, फिटस कंडीशन में अगर हम 11 टू 12 वीक्स में फिटस का जांच करेंगे तो अगर बच्चों का पता चल जाएगा कि बच्चों का थैलेसीमिया है कि नहीं, अगर वो फिटस का थैलेसीमिया है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है। तो ऐसे ही हमारा अवेयरनेस से हम ये विश्व को थैलेसीमिया मुक्त बना सकते हैं।
0: आइए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की। ये दिन पत्रकार की सुरक्षा, मीडिया की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को दर्शाता है, इसलिए हर साल 3 मई को इसे मनाया जाता है। इस बार की थीम शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, मानव अधिकारों, विकास और सुरक्षा के लिए प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। आइए चलते चलते अब नजर डालते हैं मौसम पर। पिछले कुछ दिनों से कोलकाता सहित आसपास के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही है। कोलकाता के कई जगहों पर जल जमाव भी हो रहा है। हालांकि बारिश के कारण मौसम के तापमान में गिरावट महसूस भी की जा रही है। इसके साथ ही साप्ताहिक का आज का अंक यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर वापस लौटेंगे शहर कोलकाता की खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: और अब प्रस्तुत है रविंद्र जयंती के पावन अवसर पर सोमा बंदोपाध्याय के साथ चयनिका दत्ता की बातचीत के कुछ अंश।
1: एक अभिवादन। आज रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रस्तुत है हमारा ये विशेष कार्यक्रम हिंदी और रवि। हिंदी साहित्य और कला जगत में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की लोकप्रियता है आज की हमारी चर्चा का विषय। स्टूडियो में मौजूद हैं विशिष्ट अतिथि। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय का।
2: धन्यवाद। नमस्कार। और मेरे ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन आज के इस विशेष उपलक्ष्य पर जिसे हम कहते हैं रविन्द्र जयंती के अवसर पर।
1: आप फिलहाल बाबा साहेब अम्बेडकर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय कोलकाता की कुलपति एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि लेखिका एवं भाषाविद हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत सोमा मैम। और आज का ये जो मौका है बेहद खास है, हम सबके बेहद प्रिय, हमारी जीवन की प्रेरणा स्रोत हम कहते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर को। और जिस धरती पर बैठे हैं, बंगाल की भूमि पर बैठे हैं, तो हमारा तो एक पल भी गुरुदेव के बिना नहीं बीतता। तो शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि हिंदी के साथ गुरुदेव का क्या कनेक्ट था,

0: क्या संबंध था, किस तरह उन्होंने हिंदी साहित्यकारों को बार बार प्रेरणा दी या किस तरह वो लोकप्रिय रहे, क्योंकि ये है आज की चर्चा का विषय। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अनुदित जो साहित्य है वो तो हम पढ़ा करते हैं, तो भाषा और संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की यकीनन बड़ी भूमिका होती है, तो गुरुदेव के संदर्भ में आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो मैं पुनः हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं इस विशेष दिन के अवसर पर देना चाहूंगी। और जैसा कि जयनिका जी आप कह रहे थे अभी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर पर, तो आप जानते हैं कि जिस धरती पर बैठकर हम उन पर ये कार्यक्रम आज का कर रहे हैं, तो जैसे खासकर मैं बांग्ला भाषियों की बात करूंगी कि उनके सुबह जो है वो उनके संगीत से अगर होते हैं तो उनकी शामें जो है उनकी कविताओं को और नाटकों को याद करते हुए बीतता है। तो इस तरह से वो हमारे मन मंदिर में रचे बसे हैं और इतने वर्षों के बाद भी मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी ऐसा क्षण आए जब हम उदास हो या शायद हम बहुत हर्ष में हो, उल्लास का मौका हो, कोई भी ऐसा क्षण जो हमारी आवेग से हमारी संवेदनाओं से जुड़े हुए हो, तो ऐसे समय में हम रविन्द्रनाथ को ही याद करते। वो पहला नाम और उनकी कविता, एक व्यक्ति जिसने अपने एक पूरे जीवन में 10,000 से अधिक रचनाएं लिखी, ये हमारी कल्पना से बाहर है और शायद इसीलिए हम उन्हें बिना याद किए नहीं रह पाते, तो ये एक कारण है। और जैसा कि आपने कहा कि अनुवाद की प्रासंगिकता, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वो एक ऐसा क्षण था, ऐसा काल था, आप जानते हैं कि वो हमारे भारतीय नवजागरण से जो है उनका जब जन्म हुआ था वो जुड़ा हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा हमें इतिहास को खंगालना भी बहुत जरूरी पड़ जाता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो उस दौरान जो लोग भी हमारे, हम तो उस समय पराधीन थे, तो उस पराधीन भारतवर्ष में जो लोग भी जन्म लिए थे, पता नहीं ये कैसा एक महाक्षण था कि सब एक से एक बढ़कर थे। और उसमें फिर टैगोर,
0: बिल्कुल,
1: वो केवल एक कवि नहीं थे बल्कि एक मानवतावादी कवि थे, एज अ ह्यूमैनिटेरियन हम उनको याद करते हैं, और बहुत बड़े देश प्रेमी भी थे। उनकी रचनाएं आप देखिए कि मैंने जैसे कहा कि कोई ऐसी विधा नहीं, वैसे कोई ऐसा विषय नहीं कि जिस पर उन्होंने नहीं लिखा,
0: बिल्कुल।
1: और इसीलिए शायद ये बहुत स्वाभाविक था कि उस समय नवजागरणकालीन जो कवि थे हमारे, जो साहित्य रचयिता थे, जो हमारे देश के सेवक थे, देश प्रेमी थे, सभी किसी न किसी तरह से जो है उनके साहित्य से प्रभावित रहे। और प्रभावित रहने का कारण ये था कि उनका साहित्य बहुत अधिक मात्रा में जो है अनुवाद हुआ। और अब जानते कि जैसे कि बांग्ला से ही सबसे पहले जो है अनुवाद, खासकर जब हम हिंदी में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हिंदी के साथ बांग्ला का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा और बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा रिश्ता, बहुत गहरा नाता रहा है। बिल्कुल उस समय से जब जो है चर्यापद को लेकर अभी ये कहा जाता है कि क्या वो हिंदी की रचना है, अपभ्रंश की रचना है या आपकी बांग्ला की, तो उसी तरह से जो है मैथिली कवि जो है कहते कि मैथिली कोकिल विद्यापति, उनको लेकर भी जो है आज भी झगड़े होते रहते हैं हिंदी और बांग्ला भाषा में कि वो किनके कवि है। इसी तरह से जो हमारे बंगाल के भी जो कवि हुए, जैसे आप, मैं एक रचनाकार का नाम लेना चाहूंगी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, काफी सालों तक पता ही नहीं था कि वो बांग्ला के लेखक है, सब लोग जानते थे वो हमारे हिंदी के ही लेखक है। इसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर भी जो है लोग इतने ज्यादा जो है उनको कह सकते कि एक उन्माद बन जाते थे कि जब उनकी रचनाओं की बात होती है, तो उनके कविताओं को, उनके उनके नाटकों का, उनके उपन्यासों का, खासकर उनके संगीतों का जो है न केवल जो है हूबहू अनुवाद हुआ उनके साहित्य का, बल्कि उनका नाट्य रूपांतरण हुआ, उनका फिल्मों में जो है कि रचनाओं को लिया गया, और संगीत की तो बात आती है, तो ये अनुवाद के बिना तो संभव नहीं था। और खुद भी अगर आप देखें तो नोबेल पुरस्कार जो उनको मिला वो भी अनुवाद के कारण। आज भी हम इस सच्चाई को जो है हम झुठला नहीं सकते कि एक बेहतरीन अनुवाद के कारण ही हमारे इतने बड़े से बड़े लेखक, अच्छे से अच्छे लेखक, शायद ये पुरस्कार उनको अब नहीं मिल पाता।
0: वैश्विक पहुंच वहां पर रुक जाती है। तो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो विभिन्न काल के साहित्यकारों ने गुरुदेव के साहित्य पर चिंतन किया, उससे प्रेरणा ली। आपने अभी भी बताया वो समय भी नवजागरण का था, और ये जो प्रभाव है कैसे हम वर्गीकृत कर सकते हैं? इसी सिलसिले में सबसे पहले मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आपसे जानना चाहूंगी, आप श्रोताओं को बताएं।
1: बहुत सही नाम आपने चुना है, क्योंकि देखिए ये जो मैं कह रही हूँ ना कि हिंदी में बांग्ला से अनुवाद हुआ है लेकिन ये परंपरा केवल जो है ये वन वे ट्रैफिक नहीं था, बांग्ला से भी जो है जिस तरह से हिंदी में हुआ, हिंदी से भी बांग्ला में काफी अनुवाद हुआ है। और रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं जो है वो हिंदी के प्रति काफी श्रद्धाशील थे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि वो जो है आचार्य क्षिति मोहन सेन के साथ मिलकर उन्होंने कबीर के 100 जो है पदों का अनुवाद किया, और वो बहुत श्रद्धा रखते थे न केवल कबीर के प्रति

0: बल्कि सुर तुलसी के प्रति भी। और उन्होंने खुद जो है इन तीनों कवियों पर कविताएं लिखी थी, खासकर सूरदास की प्रार्थना। और इन सबको देखते हुए जब हम ये सोचते हैं, हम जब विश्व भारती के शांतिनिकेतन के इतिहास को देखते हैं, आप जानते हैं कि गुरुदेव ने शांतिनिकेतन की स्थापना की थी। विश्व भारती की स्थापना क्यों की थी? क्योंकि वो चाहते कि एक उन्मुक्त परिवेश में बच्चे जो है उनको शिक्षा दी जाए। और इसमें वो सब जो है हर भाषा के लोगों को उन्होंने शामिल किया, केवल देशी भाषाओं को ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं का भी उन्होंने जो है उसके शिक्षण की व्यवस्था उन्होंने की। तब उनके मन में आया कि यहाँ पर हिंदी भवन की स्थापना होनी चाहिए। और फिर जो है वो उन्होंने सबसे पहले जो निमंत्रण उन्होंने भेजा, आप जानते हैं कि आचार्य हरी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि एक बेहतरीन लेखक, निबंधकार और हिंदी के जो है ज्ञाता थे, तो जब उनको उन्होंने ये निमंत्रण भेजा तो उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया और वो दौड़कर उनके निमंत्रण पर चले आए। केवल आए ही नहीं, उन्होंने हिंदी भवन की स्थापना की गुरुदेव से मिलकर। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि लंबे समय तक, लगभग 12-14 वर्ष तक जो है उनका गुरुदेव का साथ उन्हें मिला। और जो है इस रूप में स्वीकार करते थे, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक किताब उन्होंने लिखी थी मृत्युंजय रविन्द्र करके, बहुत ही बेहतरीन किताब है। उन्होंने जो समय बिताया था गुरुदेव के साथ उसके बारे में उनको उन्होंने बताया था। तो उसमें वो कहते हैं कि रविन्द्रनाथ ऐसे महान पुरुष थे कि उनके पास क्षण भर बैठना परम सौभाग्य का विषय होता था। सदा उनसे नई प्रेरणा और नया संदेश मिलता था। वे विधाता के भेजे हुए एक परिपूर्ण यानी कि संपूर्ण मनुष्य थे। वे सच्चे अर्थों में गुरु थे, ये उन्होंने कहा। और इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गुरुदेव चाहते थे कि एक ऐसी पत्रिका हिंदी भवन से जो है
1: प्रकाशित हो
0: जो कि विश्व भारती के नाम से जो है मतलब जाने जाए, और उसमें पूरे महादेश से, भारतवर्ष से जो है सभी प्रांतों के लोग उसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे। लेकिन दुख की बात है कि जब पत्रिका के जो पहला अंक छपा तो उस समय तक गुरुदेव जो है वो इस धरती से जा चुके थे। लेकिन कितनी श्रद्धा जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और उनकी संगी साथियों के मन में था कि आज तक वो पत्रिका अभी भी छपती है। और मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ कि जिनका भी उनमें छप चुका है, और मैं देखती हूँ कि आज भी पादक मंडली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ का नाम है।
1: क्या कहा,
0: तो ये एक बहुत
1: बहुत बड़ी बात अपने आप में, और होना भी चाहिए। जिस तरह का स्थान, जिसे बार बार हम ये बातें उभर कर आ रही हैं, क्या प्रभाव रहा उनका, उनके जीवन शैली का, उनकी लेखनी का, तो वो तो यकीनन आज भी हमारे मानस पटल पर उसी तरह से बना हुआ है।
0: हाँ।
1: तो यहाँ तो द्विवेदी जी के बाद की बात अगर हम करें तो महाप्राण निराला के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। उन पर जो प्रभाव था वो हम सबने देखा है, जिन्होंने भी निराला की कृतियां पढ़ी हैं उन्होंने देखा है कि किस तरह से वो गुरुदेव से प्रभावित थे, उन्हें मानते थे। तो वहां वो छायावाद का समय, अगर आप थोड़ा उस पर थोड़ी रोशनी डालें और निराला किस तरह से जुड़े हुए।
0: बिल्कुल, जब गुरुदेव की बात आती है तो हम निराला को भला कैसे भूल सकते हैं। और आप जानते हैं कि निराला का जो है हमारे पश्चिम बंगाल से और बंगाल की जो है महिषादल प्रांत से उनका नाम बहुत जुड़ा हुआ है। महिषादल में जो है उनका जन्म हुआ था, वो बंगाल के ही बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि वो बाहर के कम है, बल्कि वो अपने आप को भी बांग्ला भाषी मानते थे। और सबसे मजेदार जो एक उनके बारे में बहुत रोचक घटना है कि वो बांग्ला में ही वो पढ़ लिख कर बड़े हुए थे। उनके पिताजी जो है महिषादल के जो राजा थे उनके यहाँ पर कर्मरत थे, और उसी परिवेश में जो है वो बड़े हुए। तो निस्संदेह उस समय रविन्द्र का जो जिस तरह से चारों ओर जो है उनके साहित्य का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो ऐसे में वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और बाद में चलकर जब उनकी पत्नी मनोहरा देवी से उनकी शादी हुई थी, उसके बाद वो हिंदी पढ़े। लेकिन हाँ, ऐसी हिंदी उन्होंने सीखी कि बाद में चलकर जो है अच्छे अच्छे लोग उनसे हिंदी सीखने लगे, उनकी कविताओं को जो है अनुसरण करने लगे। तो ऐसे में कई बार कहा जाता है कि वो इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्हें कई बार कहते हैं कि उन्होंने अनुकरण किया, लेकिन ये गलत है।
1: जी,
0: उन्होंने कहीं पर भी अनुकरण नहीं किया, भले ही अनुसरण किया। और हाँ, जो है उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, रविन्द्र कविता कानन, अगर उसे पढ़ेंगे आप तो आप समझ पाएंगे कि क्यों वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे। गुरुदेव की किन किन काव्य विशेषताओं की बात की है, उनके व्यक्तित्व की, उनकी कृतित्व की, बहुत ही बेहतरीन किताब है वो। और जहां तक अगर आप कहेंगे कि वो प्रभाव जो है वो बिल्कुल दिखता है उनकी कई कई कविताओं में, उनके तो आप जानते हैं कि कई कविता संग्रह है, खासकर गीतिका की बात मैं कहूंगी। वहां पर एक पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि तुम ही गाती हो अपना कान, व्यर्थ में पाता हूं मैं सम्मान, भावना रंग दी तुमने प्राण छंद बंधो के निज आह्वान। और इस पंक्ति को पढ़ते ही आपके मन में टैगोर की एक कविता है अंतर्यामी, उसमें देखो आप बिल्कुल वही जो है भाव है, वही पंक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने अपने तरह से कहा और निराला जी भी ने भी अपनी तरह से कहा। मैं वो रविन्द्रनाथ की कविता की दो पंक्तियां बताऊंगी। अंतर माझे बोशी अहो रहो, मुख होते तुम्हें भाषा केड़े लहो, मोर कथा लोए तुम्हें कथा कहो, मिशाए आपन सुरे। भाव बिल्कुल एक है, लेकिन दोनों की जो है उस भाव को व्यक्त करने की जो पद्धति है, जो शैली है, वो अलग है। इसलिए किसी ने किसी का अनुकरण नहीं किया, बल्कि हाँ, अगर ये हम कहें कि एक दूसरे से प्रभावित है, उसी तरह से एक जगह वो बोलते हैं, मानस सुंदरी जो है रविंद्रनाथ के बहुत बहुत विख्यात कृति है, उसमें एक जगह कहते हैं, वो मानस सुंदरी के लिए बोलते हैं, आज कोनो काज नय सब फेले दिए, छंदो बंधो ग्रंथो गीत एसो तुम्हें प्रिय। हमारे श्रोताओं के लिए मैं बोल देती हूँ, आज कोई काम नहीं सब छोड़कर प्रिय, छंद बद्ध ग्रंथ गीत एक बार आओ तुम प्रिय। तो बिल्कुल उसी तरह की जो है वही सेंसिबिलिटी, वही जो भाव, वही संवेदना उनके निराला के प्रगल्भ प्रेम या प्रगल्भ प्रेम में वो व्यक्त करते हैं। आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्थ विकच इस हृदय कमल में आ तू प्रिय, छोड़कर बंधन में छंदों की छोटी राह। ऐसे में होता है कि जब वो छंदों के बंधन से कविता को मुक्त करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है कविवर रविंद्र से प्रभावित होकर ये बातें कहते हैं, लेकिन दोनों के भाव बेहद सुंदर है।
1: तो ये तो हमने साहित्य की बात की, जहाँ लेखने की बात आ रही है, कृतियों की बात आ रही है, कविताओं की बात है, लेकिन और भी तो आयाम है साहित्य के।
0: दो बातें और जोड़ना चाहूंगी, जो मैं कह रही थी कि निराला कई बार कहते थे कि सूरदासर प्रार्थना, जिस तरह से कवि रविन्द्र ने बांग्ला में लिखा था, उस तरह के जो है सूरदास की कृतियों पर कोई कविता लिखी जानी चाहिए, और शायद वो उन्होंने कोशिश भी की थी। तो ये तो बात है, लेकिन केवल अगर निराला की बात कहूँ तो शायद फिर मैं पूरा, जिसको कहते हैं ना कि मैं सही ढंग से जो है अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगी। निराला जी जो कि छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो छायावाद के और भी जो तीन स्तंभ माने जाते हैं प्रमुख, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये तीनों भी बहुत बड़े कवि एवं कवयित्री में गिने जाते हैं कविता के इतिहास में। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो ये तीनों भी लेकिन अपने अपने तरीके से जो है वो प्रभावित थे। सुमित्रा नंद पंत जो है, जो कहते हैं कि प्रकृति के सुकोमल कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनकी आवाज बहुत जो है मधुर थी, और वो बाकायदा एकदम हारमोनियम पर रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है रविन्द्र संगीत गाते थे, और उसमें वो सिद्धहस्त थे।
1: क्या बात।
0: और उनकी जो है कविता जैसी, मतलब मेरे मन में एक जहन में एक याद आ रही है कि शायद उन्होंने जो है गीतांजलि की जो ये थी ना, उनकी एक है वीणा
1: जी,
0: आप जानते हैं कि काव्यग्रंथ।
2: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन संचयिता प्रचार तरंगे। এখন হিন্দি ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রথমে শুনবেন আ গলে লাগ যা ছবি থেকে গান কিশোর কুমারের কণ্ঠে।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचयता है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:15:06 हुए हैं। पेश खिदमत है आपका पसंदीदा हर रोज़ा उर्दू प्रोग्राम कहकशां, आपके रेडियो मेज़बान अयाज़ अहमद रोहवी के साथ। ये प्रोग्राम प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी दस्तयाब है, या फिर मोबाइल फ़ोन पर संचयता चैनल टाइप करके ऑनलाइन रेडियो पर यह प्रोग्राम सुना जा सकता है।

अब आज की बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले की यौम पैदाइश पर। समाद फरमाएं। सामीन, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की आज यौम पैदाइश है। रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के यहाँ पैदा हुए। हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में इनकी सालगिरह ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 7 मई को मनाई जाती है। ताहम मगरी बंगाल में यह जश्न बंगाली कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है और ये तारीख मुख्तलिफ सालों में 8 या 9 मई को हो सकती है। इम साल ये तारीख 9 मई है, जो बंगाल की मजबूत इलाकाई और शकाफती जड़ों की अक्कासी करता है। सामीन, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली अदब को नई शक्ल दी और हिंदुस्तानी फन को एक जदीद नुक्ते नजर से मुतारिफ कराया। टैगोर ने शायरी के अलावे मौसिकी, फलसफा, तालीम और बसरी फन में भी अपनी फनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इन्होंने अदब में पहले गैर यूरोपी नोबेल इनाम याफ्ता के तौर पर हिंदुस्तानी तख्लीकी इजहार और फिक्र को आलमी सतह पर पहचान दिलाई। टैगोर जयंती की अहमियत और इनकी लाजवाब खिदमात और इन अकदार को याद करने में मुजमिर है जिनके लिए वो खड़े थे। इनकी तहरीरें नस्लों को इंसानियत, जज्बा आज़ादी, तख्लीकी एहसास और आज़ादी इजहार के मौजूआत से मुतासिर करती हैं। इनके गीत जो बड़े पैमाने पर रविंद्र संगीत से मशहूर हैं, बंगाल और इससे बाहर की सकाफती जिंदगी का एक हिस्सा हैं। आज का दिन सकाफती तकरीबात, अदबी इज्तमात और इनके काम से वाबस्ता मौसिकी की परफॉर्मेंस के साथ मनाया जाता है। सामीन, अब गुफ्तगु गोपाल कृष्ण गोखले की यौम पैदाइश के हवाले से। आज मारूफ समाजी और सियासी रहनुमा गोपाल कृष्ण गोखले की यौम पैदाइश है। गोखले हिंदुस्तान में बरतानवी सल्तनत के खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के दौरान समाजी और सियासी रहनुमाओं में से एक थे। गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बानी थे। सोसाइटी के साथ साथ कांग्रेस और दीगर कानून साजी दारों के जरिए इन्होंने अहम खिदमात अंजाम दी। गोखले ने न सिर्फ बरतानवी सल्तनत से आजादी बल्कि समाजी इस्लाहात को भी फरोग दिया। अपने मकासिद को हासिल करने के लिए इन्होंने दो अहम उसूलों पर अमल किया, अदम तशद्दुद और सरकारी इदारों में इस्लाह। आला तालीम याफ्ता गोखले मगरबी सियासी फिक्र को बेहतर ढंग से समझते थे, बल्कि अदम तशद्दुद पर अमल करते हुए हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराने की एक बेहतर पॉलिसी और उम्दा फिक्र रखते थे। मुख्तसर, सामीन के गोखले हिंदुस्तानी सियासत के इतदाल पसंद लीडरों में बहुत ऊंचा मुकाम रखते हैं। सामीन, अभी आप आज की बात के तहत समाअत फरमा रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले की यौम पैदाइश पर हमारी गुफ्तगु। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचयता चैनल है और आप समाअत फरमा रहे हैं आपका पसंदीदा मकबूल हफ्त रोज़ा उर्दू प्रोग्राम कहकशां अपने मेज़बान अयाज अहमद रोहवी के साथ। इसी के साथ प्रोग्राम की अगली कड़ी में समाअत फरमाएं शाम अफसाना के तहत जनाब तनवीर बिन नाजिम से उनका अफसाना मगरमच्छ के आंसू। वाज़े रहे कि यह अफसाना इससे पहले भी इस चैनल पर नशर किया जा चुका है, तो समाअत फरमाएं सामीन ये अफसाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोड़ासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने

0: विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में हुई विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि वीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा।

0: कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला

0: मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
2: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the State Government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee came to power in 2011. The new BJP government will work from the Writers Building, which is a heritage structure. In an important development today. Special observer for the West Bengal for SIR, retired IAS officer Subroto Gupta has been appointed as the advisor to the Chief Minister of West Bengal, and the 2017 batch IAS officer Shantanu Bala appointed as the personal secretary to the CM. It is learned that on 30th May, the newly elected MLAs of West Bengal will take oath at the

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: समाये हुए हैं। इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जेनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है। लेकिन नई जेनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही है आकाशवाणी की, वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधिया नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खांटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे। हम लोग तो बड़ा कमाल का एक वो, अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते। आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता, सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से, उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आप

0: ने क्या गाया और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं? आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर्ड नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR,
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी

0: रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन है और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4,000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती है, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम AK जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई, गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल

0: के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
0: और मैं प्रांजल।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
3: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इसपे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है।
4: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन्स हैं जो ये कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे ये आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला था कि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे तो मैंने उनका काम देखा। फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
5: मेरा पूजा राहुल नाम है। मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रति प्रत्यावर्तन।
1: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
0: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
1: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
0: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
1: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
6: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बौद्ध देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
0: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
1: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
0: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
1: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
7: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए, निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
0: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं

0: मैं यहां हूं और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
2: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ছিল ভারত আগামীকাল টুর্নামেন্টের শেষ দিনে রিকার্ভ বিভাগে আরও দুটি পদক জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবে। মহিলাদের দলগত ইভেন্টে ভারতীয় দল স্বর্ণপদকের লক্ষ্যে লড়াইতে নামবে। শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবরের কিছু অংশ আবার পড়ছি। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ মন্ত্রিসভার 5 সদস্য আজ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ নিয়েছেন। তামিলনাড়ুতে 120 জন বিধায়কের সমর্থন মেলায় আজ নতুন করে রাজ্যপালের কাছে সরকার গড়ার দাবি পেশ করেছে টিভিকে। আগামীকাল সকালে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন সি জোসেফ বিজয়।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह। मुख्य समाचार। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यन जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मध्य दक्षिण पंथी नेता पीटर मैग्यार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। श्री सिंह ने कहा कि बढ़ते खतरे के मद्देनजर इस उन्नत मिसाइल से देश की रक्षा तैयारियों को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारस्परिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
2: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। मध्य दक्षिण पंथी नेता पीटर मैग्यार ने आज हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 12 अप्रैल को हुए चुनाव में राष्ट्रवादी नेता विक्टर ऑर्बन पर निर्णायक जीत हासिल की थी। इस जीत के साथ ही श्री ऑर्बन का 16 वर्षों का शासन समाप्त हो गया और मैग्यार की तीजा पार्टी को संवैधानिक बहुमत प्राप्त हुआ। 45 वर्षीय नेता ने भ्रष्टाचार से निपटने और पूर्व प्रधानमंत्री के शासनकाल में न्यायपालिका, मीडिया और अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए लागू की गई नीतियों को रद्द करने का वादा किया है। श्री मैग्यार ने यूरोपीय संघ के साथ हंगरी के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने का भी संकल्प लिया है। श्री ऑर्बन के शासनकाल में यूरोपीय संघ के साथ तनाव बढ़ गया क्योंकि हंगरी मॉस्को के करीब आ गया और रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के यूरोपीय संघ के प्रयासों का विरोध किया। श्री मैग्यार का प्राथमिक लक्ष्य अरबों यूरो से अधिक की निलंबित यूरोपीय संघ धनराशि को जारी करवाना है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में पहलगाम आतंक

0: आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए अभियान के दौरान नष्ट किए गए प्रमुख आतंकवादी ढांचों की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई एक निर्णायक, सुनियोजित और सटीक कार्रवाई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज रेड स्क्वायर में आयोजित विजय दिवस सैन्य परेड का निरीक्षण करते हुए यूक्रेन में रूस की जीत पर विश्वास व्यक्त किया। ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर विजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। समारोह में कई विदेशी नेता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे नाटो ब्लॉक द्वारा समर्थित और हथियारों से लैस एक आक्रामक शक्ति का सामना कर रहे हैं। विश्व दर्पण समारोह आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दक्षिण कोरिया द्वारा अमेरिकी जहाज निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने और उसकी क्षमता बढ़ाने में मदद करने की प्रतिबद्धता के तहत किया गया है, जो द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का एक प्रमुख हिस्सा है। वॉशिंगटन में दक्षिण कोरिया के उप व्यापार मंत्री पाक जंग सुंग और अमेरिका के वाणिज्य उप सचिव विलियम किमिट ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पिछले साल के व्यापार समझौते के तहत दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी जहाज निर्माण क्षेत्र में 150 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का वादा किया था। इस समझौते में वार्षिक 20 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करना है। अमेरिका ने कहा कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्री रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम गेब्रियसस हंता वायरस से प्रभावित MV होडियंस क्रूज जहाज से 140 से अधिक यात्रियों और चालक दल को सुनिश्चित निकालने के लिए स्पेन के टेनरिफ पहुंच गए हैं। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने आज विनेश फोगाट को अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 15 पृष्ठों के नोटिस में महासंघ ने कहा कि UWW डोपिंग विरोधी नियमों के अंतर्गत संन्यास से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य 6 महीने की नोटिस अवधि पूरी न करने के कारण विनेश इस वर्ष 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

0: Please stand by for news to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया।

0: আঙুর ছবিতে এর পরের গানটি আশা ভোঁসলের কণ্ঠে।
1: হুম।